0: एहारा निहार एहारा मिहार
1: दिवे एफएम नुदिह एक मेगाहर्ट्ज दिवेंग मुनिफु एफिलवा देनुमुगा अबदुस

0: lo de que me gets de jefe mon mega de algo me curie me genda y un tering que hobon mi shoga algo me que un tería ka mi far fono gula la moni a gula la if me moni fu moni
1: ad
0: kine hal moni
1: mira asko hawara barabar am lakin
0: wara barabar wara zama we jaba to no ata to moni
1: ad
0: ori hak wes barabar to
1: ah era asko ha barabar
0: asko gati ulen
1: ad
0: mosun kine miedo
1: मौसम विस्सा तो है के बने वे ने कम को मेवा को तो अने पुड़कों आवी बीफा नकाल वत्र का होते का बाना विस्सा हेंदन वरा वारे वे
0: दादी एकाल गति ने हमें माल लेंगे
1: एंदो
0: दुरु देरम मी एनो दे सराहा दे एकम को सन दादी एकाल मौसम
1: दे मेवा मेवा को तो हम होरी हाता का सिसारा का मतलब
0: मोली राज देव सम विसारा गोते मिदा कने दो कुरेंगे दे दो सम मौसम हे हरंगल नुवाने कम गाव में इधर लफा कुरी में है नो कौन का में गति ओलेन
1: मे मेगाडे मे रोशिफी है नी मे तो फोटांग को लेगेने मोटे वोनी मा देंगे बहट्टा सियाम सकरा वाने ती सिहलाफा बहट्टा लेगे मे
0: अलमारी के बेहट्टे में क्या काम करूं ते?
1: उन्हें वाला उन्हें को दामन दम।
0: ते देती। दामन उन्हें को आने का मको वाले की ना मी हूँ को गुले का में गई
1: तो। वाला वाला की ना मैं हर हैं बाकी वाफ़ उन्होंने हम फटे हैं कभी समा हमारे लाफ़ भाटा वाह का बने का मुनी या कहाँ हम एक हमें नोवी हम।
0: ऐहंदा। तें ती को तो फिर फिर बेहतर मा बताबरे बड़ा रोट्टा दानी तो उदिन ना देखा हम माँ का उधर नहीं है बताबरे रोशी तो आज तो फिर ही हम कुदी रंगले न गीन गीने वे गीने गुले करने चाहिए न तो मिंगलों का साला
1: फोन कला यहाँ गीने को फिर फनुस बाहर टमरे काम वी मारोशी मिके कुदी ना विस्कान दे दे मेरा कुछ एक कामी मेरे तेरे को बोला कुलेंग आसुले गुरु को आदि एक को नोगोस तो लेती हुए एक बेटिंग कुटिंग अन्ना ने हिंदी
0: में ये मैं कुदे ने शाय को तितायार कर रही तो उधर का सुप्रा रंगड़वाने कुदिन तिबिया
1: दे दे हिंगुन्ना
0: ये माती मसाक तो के तेरे में स्मृति मैं गुड़ाला वाह के दक्कालम बेनो में फतावा रब बड़ा Emma, love me to hallo. Then, inge money.
1: Ah, the budget.
0: Okay, thank you.

0: मी हम तो गुआ ना ये ना चाह पिन नंबर नो फ्रेंड ने हिसाब एकन ती पे माणी
1: हां को बा मिता हुना डस्टबिन एहरी दो मी वेस डस्टबिन कन्नो ला माणी
2: नो दिहे एकेम मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबादो एकु गबो मा बाउ दो वेत.

বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম, আসসালামু আলাইকুম। নদীয়া কে মেগাহার্টজ দিবেহি এফএম ও রেগান্ড আশেক গে খবর ধন্যবাদ। মামি বাদল খোলি আরগুন ফাহিদা ইব্রাহিম মেগাডি গে মুহিম খবর তাকা বালালায়র পিজিও 2.0 আয়কু দিহাস আশাবিসওয়ান আহর পিজি অফিস ফেগেন্দানি কানুন হুদ্দকুরা এমএ মাতি ফেমবর প্রসিকিউশন গে মাসেকেতা ডিজিটালাইজ কোফাওয়া অফি হকমা প্রসিকিউটর জেনারেল আলুস্তাজ আব্বাস শরীফ ফিদাল বেজে PGO 2.0 মশরু ইফতিতাহ কুরমা বেবি রসমিয়াতুগা পিজি ওয়ানি এ মশরু আকু পিজি অফিহুগে খিদমেতকশা মাসেকে তকাং আন্না লুইতা ফাহা কুরবাফা প্রসিকিউটর জেনারেল আলুস্তাজ আব্বা শরীফ ফিদালভি PGO 2.0 মশরুগে সাতেক দুস নিউমুগে কুরিং এ অফিহুগে হুরিহা মুজাফুন্না মাসেকতা বেনুয়া মোবাইল ডিভাইস লিবিগিনদানি কামা এ অফিহুগা মিবাগুতু সতেক নুয়দিহ নুয় মুজাফুন তিবীরু এগে তেরে সতেক সালিস নুয় মুজাফুন্না মাসেকে কুরুমা মোবাইল ডিভাইস দীফ নুয়াকমা পিজি বিতাড়বি। মিহুন দিরিউলে হুরিহা রশেক ফুলুহুঙ্গে মার্কজতা কায়েম কুরুমগে মশরুতা আন্নাহরুগে জুনগে নিয়লা নিম্মুমা মাসেকে কুরুমুন্দাকমা দাখিলি সালামতা মাসেকেত্তেরকমা ফান্নিয়াতা বিহি ওয়াজির আলী হুসান বিতাড়বেজে ওয়াজির মেহিম বিদালী মুড়ি রাজ্যেগা ফুলুহুঙ্গে খিদমে কায়েম কুরমা কুরবা মাসেকে তকা গুড়েগুতুং রায়ীতুঙ্গে মজদিহুকে মেম্বরকু কুরেবি সুয়ালক জবাব দেবমুং দাখিলি সালামতা মাসেকে তেরকমা ফান্নিয়াতা বেহে ওয়াজির আলী হুসান বিদালী মি সরকারু আয়রু রাজ্যেগা ফুলুহুঙ্গে আমিল্লা মরকজ তক কায়েম কোগ্গেন খিদমে ফোর কোদ্দেমুন দিয়ে গায়গণ্ডক বিহি রশ্কমা ওয়াগুফ কুরুমা সোদগায় কুরুমা কায়েম কুরি লিঙ্কুতকু মিয়াহর মিহাতন 3 মিলিয়ন বুরে গিন রুফিয়া লিবিজে ইসলামী কন্ততকা বেহে উজারাগে ওয়াগুফ ফান্ড তরগিকো শরুই উসুলতকা এগত নগুদু ফ্যাসা ওয়াগুফ কুরেবেনে নিজাম কায়েম কোফাওয়ানি মিদিয়াহরুগা ইসলামী কন্ততকা আওগাফা বেহে ওয়াজির ডক্টর মোহাম্মদ শাহিম আলী সাইদ বিদালভি ইসলামী কন্ততকং এহিওয়া ওয়াগুফ ফান্ড তরগিকো ফান্ডং এহিউমা মীরা ওয়েবসাইট তেরেং ওয়াগুফ কুরুমা সোদগায় কুরুমা কায়েম কুরি লিঙ্কুতকুং মিয়াহরুকে মিহাতন 3 মিলিয়ন বুরে গিন রুফিয়া লিবিফাওয়াকমা এ ফ্যাসা খরদু কুরানি ওয়াগুফ ফান্ডুগে ট্রাস্ট স্টেটমেন্ট কা বয়ান বেগেনওয়া কঙ্কমা ওয়াগুফ ফান্ডুং উসুলগওয়া গোতুগে মাতিংকমা ওয়াজির বিদালভি বেরু ফ্যাসাগে কানুন গেদশুং কোম্মে ফতুরুবেরিয়েগে বোলক নগমুং আন্না ফসতেক ডলর উওয়ালা বেরু ফ্যাসাগে কানুন ইসলাহ কুরং হুশালং মলডিভস মনিটারি অথরিটি নিম্মাফি দিবেহি রাজ্যগে ফ্যাসায়া বেহে সিয়াসত হরদনা কুরমা কুরমুন্দা মাসেকতুগে তেরেং এমএ মেইনওয়ানি বেরু ফ্যাসাগে কানুনং আদি কৌমি পেমেন্ট সিস্টেমগে কানুনক গেন্ন এ ইদারে ফেন্ন ইসলাহ আম কুরাবাফা বেরু ফ্যাসাগে আ কানুন আমল কুরম ফশাফানি মিদিয়াহরুগে জানুয়ারি মাহুম ফিশিগেন মে কানুন গে দশুং গেনে এমএ বড় এ বদলকি রাজ্যবন্ন বেরু ফ্যাসাগে তেরেং মিমবর ব্যাংক তকু মার কুরং লাসিম কুরুং কানুন গে বেনুমা বেরু ফ্যাসাগে আমদানি লিবে ব্যফারিত থিং গিন্দিয়ক বনি বাহাফা ব্যাংক তক মার কুরা ফ্যাসাগে তেরেং ওয়াকিন সত্তে এমএ মেইন কন্ডালা মুদ্দতে গে তেরেগ বিকন জিহে গুত আলং আমল কুরম ফিশি কানুন লাসিম কুরে ফেনক কোপরেশন লিমিটেড গে মুদলা খিদমেং হোদুং কুমফুনিগে মালি হালতা হিসাব তা বিলেহেট্টুমা গুলে খাস অডিট কা ফাহাক্কোফাওয়া কঙ্কং তাহুগিগু কুরুমা এন্টি করপশন কমিশনা দিবেহি ফুলুহুঙ্গে খিদমতা এঙ্গুমা রাইতুঙ্গে মজলিহুং ফাসকোফি মি অডিটকি দিহাস 21 আহরুম ফিশকেং দিহাস 23 আহরা হামিয়া ফেনকং মুদলা খিদমেং হোদুমা মালি হালতা দি হিসাব বলহট্টমুং অ্যাগোয় বয়াঙ্কুং হদাফাওয়া অডিটে মি রিপোর্ট রাইতুঙ্গে মাজলিহুগে মালিয়ত কমিটিন দিরাসা কুরুমাফহু 30 হুশেলমেওয়ানি হুশালুবাফা ফেনকায়গে অডিট রিপোর্টগে কুমফুনি দিহাস 21 আহরুম ফিশকেন দিহাস 23 আহরা হামিয়া কুমফুঞ্ঞা মালিগতুং গেল্লুম ওয়ানেহিং কুমফুনিগে কওয়ায়তকা খিলাফা আমল কোফাওয়াকমানি ফাহাক্কোফা আদি একে মশরুত হিঙ্গুমুগা এর হুন্নেবি ম্যানেজিং ডিরেক্টরগে আইলি গুলুংহুরি কুমফুনিতক গিন আদদেগে মশরুত দীফাওয়াকমবেস ওয়ানি ফাহাক্কোফা কিরিত কুরআন কিয়মুগে 30 আব্বান কৌমি মুবারাতুগে অডিশন তন নিম্মালাফি কিরিত কুরআনা বেহে কৌমি মরকজু মিহারওয়ানি অডিশন গা ব্যাবরিবি কুদিঙ্গে নতিজা পোর্টালং আপলোড কুফা পোর্টাল ওয়ানুমাফহু একুজ্জেগে আইডি কার্ড নম্বর জাহাগেন বলালেবেনে মিয়াহরুগে কৌমি কুরআন মুবারাতকি
ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಒಣಿಗಣ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೊಡತಿ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಗಿನವು ಮಫೋಹು ಬಾವಾ ಫುರತಮ ಮುಬಾರಾಯ್. ಎಹೆಂ ಅಹರುತಕ ಖಿಲಾಫಾ ಒಡಿಶನ್ ಬುರುತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ವವಾಯರು ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರು ಎಕಾವಿಸ್ ರಶೆಗ್ಗ ಒಡಿಶನ್ತ ಬಾವಾಫವೆ. ಮಿ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಒಡಿಶನ್ ಬುರುಗ ತಿಂಹಾಸ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಕುದಿಂ ಬ್ಯಾವಿರಿವಿ. ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಒಡಿಶನ್ಗ ಕಿಯವಾಫವಣಿ ದಿಹಾಸ್ ಹೈಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ತೆ ಕುದಿಂ. ಒಡಿಶನ್ ಬುರಫೋ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಅದಿ ಫೈನಲ್ ಬುರು ಮಾಲೆಗ ಬೇವುಮವಣಿ ಹಮಜಿಹಿಫಾ. ಮಿದೆ ಬ್ಯಾವಿಸ್ ಅಣ್ಣಮಹುಗೆ ದಿಹೇಕಾ ನವಾರವಣ ದುವಹಾ ದೆಮೆದುಗ ಬೇವುಮವಣಿ ಹಮಜಿಹಿಫಾ. ದಿವೆಹಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೆಜುಯೇಟುನ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರುಮಟಕ ಸಿಹತಾ ಆಯಿಲಾಯ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಎಹಿಯಾ ಬಿಹೇ ವುಜಾರ್ಯಾಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸ್ವಸೆವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದಿಮೆದು ಎಬ್ಬ ಸುಮೆಕ್ಕ ಸೋಯ್ಕೊಫಿ. ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಕ ವಾಹಕ್ ಫುಳುದಕ್ಕಮ ಸಿಹಿ ವಜೀರ್ ಕೀಲಾಲಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸಿಹಿ ದಾಯಿರ ಬೇನುವ ಡಾಕ್ಟರುನ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರುಮ್ಗ ಮಿ ಎಬ್ಬ ಸುಮ್ಗೆ ಸಬುಂ ವರ ಬೊಡತಿ ಫಸೇಹತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮ. ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೆಜುಯೇಟುನ್ನ ಬೇನುವ ಕ್ಲಿನಿಕ ತಮ್ರೀನ ಅಮಲಿ ತಜ್ರಿಬಾ ಹೋದಮ ಹುಳುವಿಗೆಂದಿಯ ಮುಹಿಮು ಫುರುಸತೆಕ್ಕಂ ವಜೀರ್ ಫಾಹಕ್ ಕುರೆವಿ. ಬೆಂಕಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾಲಿಬುಂ ಇತುರ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಣ್ಣ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಬಾಜಾರಂ ಇತುರು ಲುಯೆಂಗ್ ಹೋದ ದಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಂಕ್ ತಕಂ ಹಫ್ತಾಯಕು ದೂಕುರ ಅಮೆರಿಕಾ ಡೊಲರುಗೆ ಮೆಂಬರು ಫಾನ್ಸಾಸ್ ಏಕೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಕುರುಮ ಮರ್ಕಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಎಂಐ ನಿಮ್ಮಫಿ. ಮಿ ಹಫ್ತಾಯ ಫೆಷ್ಕಿಂ ಕುರಿಯಂಗ್ ತಿಂಗ್ ಹಫ್ತಾಯ ಮಿಗೆನೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಕೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತಾಗೆ ಇತುರು ವುಮಕಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾಲಿ ಬೇನೆ ಮಗು ಇತುರ ಫಹಿಕೊದ್ದಿ ಮುದಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರ್ಮ ಬೇನುವ ಫ್ಯಾಸಾ ಹೋದುಮುಗ ವಿಯಫಾಡಿತಕ ಕುರಿಮತಿವ ದತಿತಕಂ ಹಲ್ಲೆಂಗ್ ಹೋದಾಯ ದುನುಮಗ್ಗೆನ ಬದಲೆ ಕಮ ಎಂಎಂಎಂ ವಿತಾಳ್ವಿ. ಮಿದಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಂ ಫೆಷ್ಕೆನ್ ರಾಜ್ಯ ವಣ್ಣ ಡೊಲರುಗೆ ಮಿಂವರು ಮದುವು ಮಾಗುಳಿಗೆಂಗ್ ಬೇರು ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಬಾಜಾರ ಕುರಿಮತಿ ಫವಾ ಫಿತ್ತುಂತ ಕುಡ ಕುರುಮ ಎಂಎಂಎಂ ಅಣ್ಣನಿ ಮುಹಿಂ ಮುಫಿಯವಳು ತಕ್ಕೆಂಗ್ ಅಳಮುಂ. ಮಿ ಫಿಯವಳತ ಡೊಲರು ಲಿಬೆ ಮಿಂವರು ದವ್ವೆಫವಣಿ ಮೆದುರುಮತಿಯಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಹಮಣು ಜೆಹುಂತವುಗೆ ಸಬುಂ ಫತುರುಕಂಗೆ ಸಿನಾತಂ ಆಸ್ಫವಾ ಮಡಜೆಹು ಮಾಗುಳಿಗೆಂ ಕಮ ಮರ್ಕಜಿ ಬ್ಯಾಂಕುಂ ವಿತಾಳವೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಷರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಕ್ಕು ಮಸ್ವೆರಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಯೋ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಸ್ಸ ಮಿಫ್ಕೋಯ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂ ದೆಮೆದು ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಬ್ಬಸುಮೆಕ ಮಿಯದು ಸೊಯ್ಕೊಫಿ. ಮಿಫ್ಕೋಯ ಮಸ್ಕಿರ ದೋಣಿ ಫಹರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅತ್ತೆಯೋ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜೆಸ್ಸು ಮಟ್ಟಕ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂ ಮಿಫ್ಕೋಯ ದೆಮೆದ್ ಕಾಯಂ ಕುರಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ ಗಸೋಯ್ ಕುರಿ ಮಿಫ್ಕೋ ಹೆಡ್ ಒಫೀಹುಗ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾ ತೆಗ್ಗ. ಮಿಗೊತ್ತು ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಫರಾತು ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ ಗಸೋಯ್ ಕುರೆವಿ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದಿ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಅದಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂಗೆ ಫರಾತು ಸೋಯ್ ಕುರೆವಿ ಎ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಆಶಾನ್. ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಬಡಾಗೈ. ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಶೆಡ್ ತಕ್ಕ ಕಾಯಂ ಕೊಫವಾ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಕ್ಕುಂ ಮಿಫ್ಕೋಯ ಮಸ್ಕಿರುವ ದೋಣಿ ಫಹರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಯೋಲಿಬೇನೆ. ಮಿಗೊತ್ತುಂ ಫಿಲಿವರ್ ಫಿಷರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ್ಡು ಫಿಷರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದಿ ಅಡ್ಡು ಫಿಷರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಮ್ಮಿಯದುಂ ಫಿಶಿಗೆಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಯೋ ದೂಕುರಾಗೊತ್ತವಣಿ ಹಮಜಸ್ಸಾಫ. ಮಿಫ್ಕೋಯ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂ ದೆಮೆದು ಕಾಯಂ ಕುರೆವುನು ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಫ್ಕೋಯ ಮಸ್ಕಿರಿಯುಮಫೋ ಲಿಬೆ ಬಿಲ್ ದೆಕ್ಕುಮುಂ ದೋಣಿ ಫಹರ ತೆಯೋ ಎಳೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮಿವಣಿ ಹಮಜಿಹಿಫ. ಮಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ಗೆ ದಶುನ್ ದೋಣಿ ಫಹರಂಗಳ ತೆಲುಗೆ ಬಿಲ ಫ್ಯಾಸಾ ಕಂಡಾಣಿ ಎ ದೋಣ್ಯಕು ಮಿಫ್ಕೋಯ ಕಿರುವಿ ಮಹವ್ವಾ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ತೆರೆಂ. ಮಿ ಉಸೂಲ್ಗೆ ದಶು ಮಸ್ಕಿರುವಾತ ಸಾಳಿಸ್ ಅಗ್ಗಡೀರುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಸ್ವೆರಿನ್ನ ದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಲುಗೆ ಫ್ಯಾಸಾ ಉಣಿಕುರವೇನೆ. ಮೆ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುನ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಶೆಗ್ಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಖಬರಿ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಣಿ ಮಾದ ಮಾ ಹಿಂದು ನಾಶಿಜ್ಜಹ್ಯಾರು ಎಮೆ ಬೇಫುಲ್ನವೆ ಸೂಫಾವಿರಿ ಬಾಜಿವೇರಿಯ ಕಂಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನೋದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ.

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: सेलिन डियोन के माय हार्ट विल गो ऑन की नवारसते का नोदी है गहरतो गे म्यूजिक के तारी होगा निरुनो एमे फाहक कोलेवे ए बेलेट